पैसे दे मुझे, हमें जाना है। दिया दिया, चलो चलो चाय पीबो जी, अच्छा चाय पीबो जी, चाय पीबो जी, अच्छा चाय पीबो जी, चाय पीबो जी, अच्छा चाय पीबो जी।

0: दुश्मनी भी मारी है, उसमें एक पुलिस वाला, एक वकील और एक घोड़ा, मतलब क्या जी तीनों लाते ही मारते हैं।
1: चलिए अच्छा हुआ हम लोग ऑस्ट्रेलिया में, अभी ब्रिस्बेन में तो जी दोस्ती अच्छी है।
0: अच्छा तीन वर्ड होते हैं, लॉयर, सोलिस्टर, ब्रिस्टर, कोई फर्क है इसमें?
1: है देखिए, जो लॉयर होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्वींसलैंड में एडमिट होता है, उसके बाद आपको क्वींसलैंड लॉ सोसाइटी से रजिस्ट्रेशन होता है, तब आप सॉलिसिटर बनते हो। तो इट्स अ वेरी फाइन डिस्टिंक्शन बिटवीन अ लॉयर एंड अ सॉलिसिटर।
0: इनकी पावर में कोई
1: पावर में होता है थोड़ा से, थोड़े से डॉक्यूमेंट्स विटनेसिंग करने के लिए और कई जगहों पर जाने के लिए आप लॉयर एज अ लॉयर नहीं जा सकते हैं, जबकि एज अ सॉलिसिटर जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास सॉलिसिटर जो होता है उसके पास सर्टिफिकेशन होता है क्वींसलैंड लॉ सोसाइटी से। तो ऑब्वियसली वो सब कुछ कर सकता है। लॉयर ये होता है कि उसने सारी चीज़ें सीख ली है, ही इज नाउ एडमिटेड इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ क्वींसलैंड एंड ही इज रेडी टू प्रैक्टिस। इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस आपको वो सर्टिफिकेशन चाहिए होता है जो कि क्वींसलैंड लॉ सोसाइटी से मिलता है, तब आप सॉलिसिटर बनते हो। और रही बात बैरिस्टर की, बैरिस्टर जो होते हैं वो एंटायरली डिफरेंट होते हैं सॉलिसिटर से या लॉयर से। आइदर आप एक बैरिस्टर बने या लॉयर बने या सॉलिसिटर बने, वो दो सेपरेट चीज़ें। बैरिस्टर का मेन काम होता है कोर्ट में जो केसेस होते हैं उनको देखना, कोर्ट में कोर्ट वर्क, और कोर्ट से पहले जो केसेस होते हैं वो लॉयर के पास जाते हैं। तो जो लॉयर होता है, सॉलिसिटर होता है, या वो केसेस सारे बनाता है, उसके बाद फिर वो जब डिस्प्यूट जब ज़्यादा बढ़ जाती है वो फिर बैरिस्टर को हायर करना पड़ता है।
0: अच्छा मुझे जानकारी ये थी, जितना कि मुझे पता है, वो कह रहे हैं कि जब ना जो मान जो जज होते हैं
1: जी,
0: जब उनके पास कचहरी में केस जाता है तो वहां पर जो लॉयर होते हैं, जो सॉलिसिटर होते हैं, वो बहस नहीं करते, वहां पर ब्रिस्टर की जरूरत पड़ती है।
1: जी वही वो जैसे मैंने कहा कि कोर्ट में जो भी होता है वो बैरिस्टर नॉर्मली हैंडल करते हैं, और उससे पहले जो प्रोसीडिंग होती है, जैसे कि जो भी उससे इनिशियल स्टेजेस होती हैं, वो सारा सॉलिसिटर्स करते हैं।
0: अच्छा आप सॉलिसिटर हो?
1: जी मैं सॉलिसिटर, एंड यू कैन ओनली आइदर बी बैरिस्टर और सॉलिसिटर, एक चूज करना होता है।
0: ओके, सो आपने सॉलिसिटर चूज किया।
1: जी
0: आप लॉयर से फिर ज्यादा पैसे बनाते होगे ना?
1: बिल्कुल नहीं।
0: लोग देखते हैं ना भाई, इनमें से पैसा कौन बनाता है ज्यादा?
1: बैरिस्टर।
0: सो मैं बैरिस्टर बनूं?
1: जी।
0: ओके। जी ऑस्ट्रेलिया में एक बैरिस्टर की असल में भूमिका होती क्या है?
1: बैरिस्टर की,
0: सॉरी सॉलिसिटर, अब हम सॉलिसिटर पर ही रहेंगे।
1: अच्छा जी
0: बैरिस्टर तो मेरे बनना
1: है। नहीं नहीं आप बनिए। बिल्कुल बेशक। तो सॉलिसिटर जो होता है वो इन, देखिए मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ। सॉलिसिटर का काम ये होता है कि अपने क्लाइंट्स को एक प्रिसाइज एडवाइस देना
0: जी,
1: और क्लाइंट्स जो भी इंस्ट्रक्शंस दें उनको फॉलो करना इन सच अ वे दैट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट। तो जो भी बेस्ट है क्लाइंट के लिए वो मेरे ख्याल में सॉलिसिटर को करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
0: लोगों की शिकायत होती है कि जब हम जो वकील वगैरह जो सॉलिसिटर वगैरह कर लेते हैं, इनसे जो फीस तय होती है ना, जो महीने के बाद पैसे मांगते रहते हैं, ये क्या मसला है?
1: नहीं नहीं हम लोग फिक्स फी में काम करते हैं, आप चिंता मत करिए।
0: ओके टू द पॉइंट पर आते हैं जी अभी, क्योंकि आप प्रॉपर्टी को डील करते हैं, उनमें लीगल एडवाइजेस करते हैं
1: जी,
0: आपने अपने सॉलिसिटर ही बोल देता हूँ
1: जी
0: उसके सामने आपने प्रिंसिपल लगाया, उसका क्या मतलब है?
1: प्रिंसिपल का मतलब वो होता है कि जो कि अपना खुद का लॉ फर्म खोलता है
0: जी,
1: वो एक प्रिंसिपल सॉलिसिटर होता है, और उसके अंडर जो भी सॉलिसिटर काम करेगा वो सॉलिसिटर से होता है।
0: तो वो मास्टर होते हैं, आप हेड मास्टर हो
1: कह सकते हैं आप। अच्छा, डायरेक्टर भी होता है, तो प्रिंसिपल डायरेक्टर एक ही चीज होती है।
0: तो दो तीन क्वेश्चन भेजे हैं, नाम नहीं लिखा, वो भी मैं ऐड करता चलता
1: हूं। प्लीज।
0: पहली बार घर खरीदने वाले लोग सबसे बड़ी गलती कौन कौन सी करते हैं, बताओ तो जी।
1: काफी गलत करते हैं पहले। वो मेरे ख्याल में उनके जो कभी कभी ऐसा होता है कि वो एजेंट के इन्फ्लुएंस में आके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं, उसके बाद मेरे पास आते हैं या कहते हैं कि अरे मुझे तो ये पता ही नहीं था, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया क्योंकि एजेंट ने कहा था कि साइन कर दो, या किसी ने भी कहा था साइन कर दो। तो मेरे ख्याल में कॉन्ट्रैक्ट बिफोर साइनिंग रिव्यू करना जो है बहुत

0: जरूरी है, और उसके लिए एक बहुत ही एक्सपीरियंस सॉलिसिटर की एडवाइस बहुत जरूरी है।
1: दूसरा क्वेश्चन मैं इसी के साथ अटैच कर देता हूँ
0: जी।
1: जेई उन्होंने लिखा कि कॉन्ट्रैक्ट सिर पर हस्ताक्षर करने से पहले किन बातों की जांच करनी चाहिए?
0: श्योर, पहली चीज तो इनिशियल डिपॉजिट कितना अमाउंट होना चाहिए, कब देना है
1: जी।
0: उसके बाद बैलेंस डिपॉजिट कब देना है, नॉर्मली जो बैलेंस डिपॉजिट इनिशियल डिपॉजिट शुड बी द आउट से शुड बी द minimum amount you can pay, probably $1,000 these days is standard, should not pay $20,000 or $30,000 too much amount at the time of basically when you sign the contract, ye aap dein. Aur balance deposit aapko kab dena hai wo, usme dekhiye aap finance date honi chahiye, building in pest date honi chahiye, taki aap हर चीज़ को अच्छे से शुरुआत से ही आप चेक करके चलें, ताकि अगर कोई दिक्कत हो उस घर में, बिल्डिंग इन पेस्ट अगर वो फेल हो जाता है तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देते ऑन द बेसिस की बिल्डिंग इन पेस्ट खत्म फेल हो गया है, या तो फिर फाइनेंस जो है वो आपका अप्रूव नहीं हो पाया बाय एनी चांस, तो सो इन दैट केस, इन बोथ केसेस यू कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी पेनल्टीज।
1: अच्छा, कन्विंसिंग क्या होती है?
0: कन्विंसिंग वही, इट्स अ वेरी सिंपल टर्म फॉर सेलिंग और परचेजिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी।
1: ओके, सो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है?
0: इम्पॉर्टेंट तो होती है क्योंकि लोगों को जिसको ये घर खरीदना है बेचना है उसके लिए होता है। कन्विंसिंग कैन बी मेनली रेजिडेंशियल, घर खरीदना है, लैंड खरीदना, उसको कन्विंसिंग कहते हैं। अदरवाइज अगर बिजनेसेस सेल और परचेज होते हैं उसको कमर्शियल।
1: अच्छा, जैसे हम भी देखते हैं, आपको भी पता होगा, आप तो इसी में रहते हो, कुछ घर ना ऑक्शन पर लगे होते हैं
0: जी।
1: एक तो होता है कि इसका ये प्राइस है, आप वो अपनी एप्लीकेशन डालो, वो सेलेक्ट कर लेंगे, ओनर से पूछ के भी चलो ये वाला अच्छा है।
0: बिल्कुल,
1: कुछ ऑप्शन होते हैं, वहाँ पर ऑप्शन होती है
0: जी।
1: ऑप्शन के माध्यम से अगर आप घर खरीदते हो, ये कोई कानूनी जोखिम है इसमें?
0: आजकल ऑप्शन हो रही है काफ़ी, काफ़ी लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं घर ऑप्शन से। प्रॉब्लम ऑप्शन में है कि जो ऑप्शन में आप खरीदते हैं वो अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है
1: जी।
0: आपने एक बार ऑप्शन में साइन कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली वो अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें आप ये नहीं कह सकते ओ मेरा फाइनेंस फेल हो गया, तो
1: अगर फाइनेंस अप्रूव ना हो बाद में ऐसी मुश्किल आए तो मुकर नहीं सकते
0: उसमें। उसमें हमेशा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए प्रॉब्ली ऑक्शन में आप जब भी जाओ तो कॉन्ट्रैक्ट को बहुत अच्छे से रीड करो, और इफ पॉसिबल ऑक्शनियर से एक दिन पहले या दो दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मांगो, और उसको किसी सॉलिसिटर को जो स्पेशलाइज करे प्रॉपर्टी लॉ में उसको दीजिए आप रिव्यू करने के लिए। ये मेरी एडवाइस है
1: जी। सो मोस्टली आपको लाइव अभी क्वींसलैंड से सुन रहे होंगे क्योंकि आप क्वींसलैंड में सब्सिडी देते हो
0: जी।
1: क्वींसलैंड में घर खरीदने वालों के लिए आपकी सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या है?
0: सबसे महत्वपूर्ण सलाह तो ये है कि फाइनेंस हमेशा बैंक प्री अप्रूवल हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। दैट वुड बी द फर्स्ट पॉइंट कि आपके पास कैपेसिटी है खरीदने की, और कितने की कैपेसिटी खरीदने की। लाइक अगर आपका प्री अप्रूवल 1 million आता है और अगर आप 2 million की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और ऑल्सो आपको देखना होगा कि जहाँ पे आप घर ले रहे हैं आर यू हैप्पी विद दैट, और कौन सी कैसी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, इज़ इट अ टाउन हाउस, अपार्टमेंट, वैकेंट लैंड और हाउस?
1: ओके, कई बार मैंने खुद भी देखा है
0: जी,
1: जो बैंक का अप्रूवल लेटर होता है जिसमें आपको उन्होंने फंड वगैरह दिए, हाँ ठीक है हम आपका इतना कवर करेंगे
0: जी।
1: तो उसमें कई बार वो स्टार्टिंग लाइन लिखी होती है जे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर लोन आपको हम अप्रूव करके दे रहे हैं, उसमें क्या फ़र्क होता है?
0: उसमें क्या होता है, वो एज अ सिक्योरिटी जो होती है वो आपकी दूसरी प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी मान के उसको आपको अप्रूवल देते हैं फाइनेंस की
1: जी। सो आप कहाँ पर सब्सिडी देते हैं क्वींसलैंड में? ब्रिस्बेन में
0: जी,
1: कहाँ पर है आपका ऑफिस?
0: मेरा ऑफिस तो टुवोंग में है, पर क्योंकि ये ऑल ओवर क्वींसलैंड है, इट्स ऑल इलेक्ट्रॉनिक नाउ, सो इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट्स आर मैंडेटरी इन क्वींसलैंड नाउ सिंस 2023, तो सब कुछ आजकल ऑनलाइन ही है सारा का सारा, तो ओ एनीवेयर इन क्वींसलैंड हम सलाह दे सकते हैं ओवर द वेबकैम, ओवर द फोन, ईमेल्स, एनीथिंग रियली।
1: सपोज कोई बंदा आपको फोन करता है
0: जी,
1: कोई हो सकता है कोई नया नया पका हुआ हो, वो कह रहा है कि यार मेरे पास ना 7-8 लाख लाख डॉलर है
0: जी,
1: मुझे घर चाहिए
0: जी,
1: ऐसे बंदे को क्या कहूँगे आप?
0: कहाँ पे चाहिए? आपने किसी एजेंट से बात की है? कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? क्योंकि मैं तो प्रॉपर्टी के बारे में, मैं खरीदवा, लाइक आई कैन हेल्प इन रिव्यूइंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड परचेजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, आई कांट गिव देम अ प्रॉपर्टी, दैट्स देयर जॉब टू फाइंड, प्रॉबली लुक फॉर अ गुड रजिस्टर्ड एजेंट इन द रिस्पेक्टेड एरिया दे आर लुकिंग टू परचेज द प्रॉपर्टी।
1: क्लाइंट्स के साथ केवल मिलने का सबब बन जाता है, कई बार मार्केट में बंदे मिल जाते हैं
0: जी,
1: वो कह रहे थे जो ये सोलिसिटर वगैरह होते हैं ना, जब इनसे हमने डील करनी है तो वो बहुत मीठा मीठा चलते हैं, जब काम शुरू हो जाता है ना, जब पता ही लगता फोन ही नहीं उठाते। ऑस्ट्रेलिया में भी ये प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों करते हैं आप?
0: वेल मुझे दूसरों के बारे में नहीं पता, पर मुझे अपने बारे में पता है कि मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स की 100% जिम्मेदारी लेता हूँ और हमेशा उनकी सही एडवाइस देने की कोशिश करता हूँ।
1: यकीन कर ले फिर हम
0: बिल्कुल करिए।
1: बहुत जानों ने कभी इकट्ठे बैठते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरे वकील ने मुझे बहुत खराब किया, वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता, फिर जब देता है इतनी जल्दी में देता है कि जेल लेके आओ, जेल लेके आओ, जेल लेके आओ, ऐसा तो इंडिया में चलता है?
0: पता नहीं, यहाँ पे तो हम लोग शुरुआत से ही इनिशियल लेटर ऑफ इंगेजमेंट भेजते हैं जिसमें सारी सारी प्रोसेस उनको लिखी होती है, डेट्स लिखी होती है, अमाउंट्स लिखे होते हैं, सच एज ट्रांसफर ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, पैक्सा फीस, आउटलेस, सर्चेस, प्रोफेशनल फीस, हर चीज़ लिखी होती है, और उसके अलावा भी हम लोग उनसे फ़ोन में पर्सनली मैं सलाह देता हूँ, बताता हूँ एक एक चीज़ ताकि उनको समझ में आए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर क्वाइट ओवरवेल्म्ड, उनको काफ़ी ज़्यादा लगता है कि अरे पहली बार है हमने किया नहीं है, तो उसमें हम लोग को ज़्यादा थोड़ा उनका हैंड होल्डिंग करनी होती है, पर दैट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ अ जॉब।
1: ओके, एक सिंपल सा और क्वेश्चन है
0: जी,
1: कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने में क्या अंतर है?
0: हाँ, काफ़ी अंतर है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो होती है वो नॉर्मल घर हो गया आपका, अपार्टमेंट हो गया, ड्वेलिंग हो गई आपका, हाउस हो गया, आपका वैकेंट लैंड हो गया जहाँ पे आपको घर बनाना है या टाउन हाउस बनाना है, वो सब हो गया। पर जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है वो जैसे आपका बिजनेस हो गया कोई, जैसे कि आपका शॉपिंग सेंटर हो गया, ये चीज़ें, तो ऑब्वियसली लॉज आर डिफरेंट, बोथ completely different, but they both are still like electronically you can purchase them on Pexa.
1: Okay, banking से related है कुछ मेरे पास सवाल।
0: Sure.
1: Home loan document में लोग अक्सर कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें पढ़ना भूल जाते हैं जो आपने शुरू में बात की थी?
0: Home loan में देखिए amount कि कितना अप्रूवल उनको मिल रहा है, और वो कभी कभी उनको लगता है, और फीस उसमें कितनी कट रही है, उनकी हिडन कॉस्ट एंड चार्जेस एज यूजुअल होते ही है सबके
1: जी,
0: तो वो सब मेरे ख्याल में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो लोन देखना है कि 30 इयर्स का, 25 इयर्स का है, और कितने परसेंट उनका लोन रीपेमेंट है, इंटरेस्ट रेट है, लाइक 6.25 है कि, और दीज डिफर वेरिएबल चल रहा है 6.35 है, क्या है?
1: अच्छा, मंथली रीपेमेंट्स देनी अच्छी होती है कि फोर्टनाइटली देनी अच्छी होती है?
0: फोर्टनाइटली मेरे ख्याल में अच्छी होती है, बट डिपेंड्स ऑन पीपल, क्या वो समझते हैं, बट आई थिंक फोर्टनाइटली इज बेटर.
1: अच्छा, एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है.
0: बिल्कुल.
1: वो वैसे आपके दायरे में नहीं आता पर पूछ लेते हैं. किसी को जो समस्या आई है, लैंड ले ली
0: जी,
1: लोन वगैरह अप्रूव हो गया, बिल्डर को बोल दिया कि बनाओ भाई. बिल्डर लेट करता जा रहा है, लेट करता जा रहा है, आखिर में बोला कि मेरे बस की बात नहीं है, 40-50 हज़ार डॉलर और लेके आओ फिर बना दूंगा, नहीं तो मेरी छुट्टी. इस स्थिति में क्या होगा?
0: प्रॉब्ली सॉलिसिटर को आपको कॉन्टैक्ट करना होगा, सॉलिसिटर को कॉन्ट्रैक्ट देखना होगा कि उसमें क्या क्लॉजेस हैं, उसको कैन ही गेट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ईजली, आर देयर एनी क्लॉजेस फॉर दैट. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो ही जस्ट वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ द यू नो द कॉन्ट्रैक्ट और दे मे बी अ क्लॉज देयर. अगर ऐसा कुछ अगर होता भी है तो इन दैट केस वी हैव कोर्ट्स फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन, सो दे विल बी डिस्प्यूट.
1: अगर क्लॉजेस में लिखा ही नहीं कुछ भी हुआ कि अगर तुमने लेट किया तो तुम हफ्ते हफ्ते का इतना पैसा हमें नहीं दोगे, तो फिर वो कैसे उसको रोक सकते हैं? वो तो भाग गया
0: कोर्ट. दैट्स वेयर वी गो टू कोर्ट for any massive issues like that. Obviously you have to see the contract for each and everything, par agar contract mein aapko like buyer is right suppose aur jo seller aur jo developer tha he just up and go, us situation mein mere khayal mein court is the best venue to seek help.
1: Abhi RBI ne जो रेट्स हैं उसको थोड़ा सा रोक ही लिया है, अगे अभी बढ़ाया नहीं है. बढ़ती ब्याज दरों के दौर में घर खरीदने वालों के लिए आपकी सलाह क्या है?
0: अभी
1: यस
0: खरीदो,
1: स्पेशली
0: खरीदो अभी.
1: ब्रिस्बेन और पर्थ इसकी मार्केट ऊपर चल रही है.
0: देखिए पर्थ का तो मुझे इतना अंदाजा नहीं, पर ब्रिस्बेन का मुझे पता है कि प्लीज ये 2 साल पहले भी हुआ था सेम चीज ऑलमोस्ट. ये कट कॉपी पेस्ट मुझे लगता है सिनारियो. 2 साल पहले भी ऐसे ही था, 6.25 रेट चला गया था 6.3, उसके बाद 2 साल में कटते कुटाते नीचे आया, उसके बाद विद इन 2 or 2-3 months में वापस चला गया 6.25 to 6.35 राइट नाउ व्हाट द वेरिएबल रेट इज. मेरे ख्याल में हम लोग को प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए ताकि उसका जो ब्रिस्बेन में आप कहीं पे भी खरीदें प्रॉपर्टी, उसका जो प्राइस है जिस तरीके से वो बढ़ रहा है उसको देखते हुए मैं मार्केट को अभी प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि ये बढ़ता ही जाएगा. तो अगर आपने अगर प्रॉपर्टी खरीदी सपोज 700,000 की, अगर हाउस है तो 1 साल बाद वो श्योरली वो 50,000 to 100,000 उसकी वैल्यू बढ़ सकती है.
1: ओके, कई स्टूडेंट को भी थोड़ा कीड़ा होता है, जेब में 4 पैसे होते हैं, वो कह रहे हैं यार घर खरीद लूं मैं, तो क्या क्या सलाह दोगे?
0: स्टूडेंट वाओ कितना है
1: क्लाइंट है
0: कि डिपेंड्स कितने पैसे क्या है.
1: नहीं अभी वो पीआर नहीं हुए तो क्या सलाह दोगे?
0: वेरी हार्ड फॉर देम, टेल देम टू स्टडी, पढ़ें अभी पीआर बने तब बात करें क्योंकि फॉरेन रेसिडेंस में उनका फिर होगा, उसमें शायद उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा. और प्रॉब्लम ये है कि आजकल विद द न्यू लॉस कमिंग इन फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि वो तो फॉरेन इन्वेस्टर की तरह खरीदेगा, देन इट्स गोना बी रियली हार्ड फॉर हिम टू परचेज, क्योंकि उसमें लॉज अभी चेंज हो रहे हैं. मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि फॉरेन रेसिडेंट के लिए क्या लॉ एग्जैक्टली चेंज हुए हैं.
1: वो तो अभी पार्लियामेंट में भी शोर मच रहा है, तो पार्टी का नाम तो नहीं लेंगे वो तो कह रहे हैं
0: सबको पता है. तो चाइना से जो लोग खरीदते थे यहाँ पे काफी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी गई है स्पेशली चाइना से, कि ब्रिस्बेन में काफी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी चाइनीज जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स उन्हें खरीदी है. तो ये लोग बेसिकली चाहते हैं कि वो ना हो.
1: ओके, थोड़े से सवाल हैं, जल्दी जल्दी से वो लेंगे. क्वींसलैंड से रिलेटेड देखेंगे, हम क्वींसलैंड में रह रहे हैं, आपकी सुविधाएं ज्यादा क्वींसलैंड में, वैसे चलो ऑनलाइन कहीं भी मिल सकती हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में. जो अब तक की कंडीशंस चल रही है, सिचुएशन चल रही है, घर खरीदना या किराए पर रहना, कौन सा किस्त पर टिक करोगे?
0: रेंट मनी इज अ डेड मनी, आई विल टेल ऑल माई क्लाइंट्स. रेंट जो आप दे रहे हो उससे अच्छा ये कि मॉर्गेज दीजिए
1: जी,
0: कम से कम वो आपका खुद का होगा.
1: आप स्टूडेंट को पुश कर रहे हैं,
0: स्टूडेंट को नहीं
1: जगह जोड़ कराओगे आप। ओके, ऑप्शन या प्राइवेट सेल?
0: प्राइवेट सेल।
1: प्राइवेट सेल वो आपने पहले डिटेल में बताया था। प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़ा सबसे बड़ा रिस्क क्या है?
0: प्रॉपर्टी मार्केट
1: के हिसाब से बता रहा
0: हूं, क्वींसलैंड के हिसाब से वेरी हार्ड टू से, कोई रिस्क मुझे तो नहीं दिखता।
1: कोई बड़ा रिस्क जिसमें हर वक्त फंसते हैं एज अ क्लाइंट?
0: अच्छा, एज अ क्लाइंट, सॉरी, मुझे, मैं एज अ लाइक नॉर्मल एज अ मार्केट सोच रहा था। मेन रिस्क है वही फाइनेंस का, और फाइनेंस क्लॉज जो होता है उसका है कि फाइनेंस अप्रूव होता है कि नहीं, और दूसरा है बिल्डिंग इन पेस्ट का, कि बिल्डिंग इन पेस्ट में कोई प्रॉब्लम हुई अगर आपके जो आप घर खरीद रहे हो उसमें, दैट्स व्हेयर यू हैव टू टेक।
1: मैं आपको रोक रहा हूँ, बिल्डिंग इन पेस्ट इंस्पेक्शन जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट सेल से डन होने से पहले पहले होती है?
0: नहीं नहीं, बाद में होती है उसमें।
1: हाँ, वो बाद में, लेकिन लीगल पेपर साइन से पहले, कि हम अगर उसमें सेटिस्फाई नहीं है तो हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं।
0: हाँ, वो जैसे नॉर्मली स्टैंडर्ड दिस डेज 14 डेज का है, सपोज करिए, तो 14 डेज आपके, जब आपने साइन किया है, द डेट आपने साइन किया, तब से आपके 14 डेज हैं आपको सेटिस्फाई करने के लिए कि अगर आप बिल्डिंग इन पेस्ट करते हैं, अगर सब कुछ ठीक ठाक है, देन यू कैन जस्ट वेव दैट कंडीशन। अगर कोई दिक्कत है तो आइदर यू हैव थ्री थिंग्स। फर्स्ट थिंग, आप उसको सेलर से कहिए कि वो उसको रेक्टिफाई करें, या दूसरी चीज ये है कि आप कुछ मत करिए उसमें। अच्छा। या तीसरी चीज ये है कि आप जो टर्मिनेट कर सकते हैं।
1: ये तो 3 करोड़ का क्वेश्चन होगा ना फिर। इसमें मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल।
1: कई बार ना जो जो सोलिसिटर वगैरह होते हैं, जहाँ जो प्रॉप, जो सोलिसिटर का तो काम नहीं है, जो जो प्रॉपर्टी एजेंट है जिसने आपको घर सौंपा है, वो क्या करते हैं? अच्छा ठीक है जी, पेस्ट एंड बुक करवा लो, बिल्डिंग पेस्ट एंड बिल्डिंग जो दोनों टर्म होती है।
0: जी जी।
1: साथ में वो आपको ना उस बिल्डिंग का वो एक पेस्ट कंट्रोल का किया हुआ जो बिल्डिंग का वो भी दे देंगे, वैसे तो करवाई हुई है जी, देख लो जी, जो ओके है। जब हम अपने प्राइवेट से करवाते हैं उसमें डिफेक्ट्स निकल जाते हैं, तो ये कैसे है फिर?
0: पता नहीं, मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि बिल्डिंग एंड पेस्ट इंस्पेक्टर जो होते हैं वो थर्ड पार्टी हैं, शुड बी इंडिपेंडेंट।
1: इसका मतलब उनकी सीटी डली हुई होती है?
0: मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वो हमारे जो श्रोता जो सुन रहे हैं वो समझ सकते हैं।
1: ओके। तो पूछने को तो और भी बहुत कुछ है, आज हमने 20-25 मिनट लगाने थे, तो साढ़े जितने भी सुनने वाले ने, सब तो पहला तो मैं राजीव उन्हों का धन्यवाद करदा, क्योंकि साढ़े नाल होर भी गैसट आए हुए हैं, उन्होंने भी गलबात करनी है। साड़ी कोशिश रहेगी कि असी हरेक प्रोग्राम के चाहे उन्होंने फोन के राबता बनाइए, तो चाहे वह स्टूडियो के आन, जिन्हें भी थोड़े सवालत आते रहने, तुम इस नंबर के उपर सवाल दे सकते हो, तो वो आप इन्हों जरूर राबते रहा करा, तोड़िया ये सारिया जड़िया दिमागी परेशानियां ने वो फ्री ऑफ कॉस्ट निकल जाए। पर हाँ, जो तुम उन्होंने ऑफिस जाओगे फिर तो थोड़े तो कारण घंटे चलेंगे।
0: शुक्रिया।
1: जाते जाते कोई होर अपने वालों स्नेहा देना चाहो, जाते जाते हिंदी में बोलना पड़ेगा भी श्रोता।
0: मैं बस यही कहना चाहूँगा सबसे कि कुछ भी आप लोग खरीदना चाहें या बेचना चाहें, कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमेशा एक प्रॉपर्टी सॉलिसिटर को चूज करें, जो कि प्रॉपर्टी लॉ में उसकी नॉलेज हो, ज्ञान हो उसका, और मेक श्योर करें कि वो आप कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करें बिफोर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ये मेरी सबसे बड़ी सलाह है।
1: जाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा है,
0: चलिए चलिए पूछ ली।
1: वो कह रहे हैं कि अगले वीक उन्होंने आना है, वो अगले वीक देखेंगे, ये बता दो कि हम तो कह रहे हैं ब्रिस्बेन में रह रहे हैं, ठीक है, सो ब्रिस्बेन में भी जे बात है, कला ब्रिस्बेन भी नहीं बोला, इस बीच उसके हाथ में जुड़ा है, लोगन जुड़ा हुआ है
0: कहीं पे भी,
1: तो जे सारा एक ही एरिया है, चाहे वहां पर नॉर्थ में चले जाओ, सनशाइन कोर्ट तक चले जाओ
0: जी।
1: कह रहे हैं कि भाई मार्केट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है
0: जी,
1: जो आज से 2 साल पहले 5 का था 7 का हो गया, तो 2 साल के बाद जो 9 का हो जाएगा, फिर इतना चलता रहेगा जी मार्केट?
0: मेरे ख्याल में 2 साल के बाद मिलियन होगा
1: जी,
0: इतना बढ़ेगा,
1: मैं तंबू लगा लूं फिर अभी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मार्केट जिस तरीके से सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर रहा है,
1: रीजन क्या है इसका? तो मेलबर्न सिडनी में तो मार्केट डाउन है,
0: क्योंकि वहां के जो मेलबर्न और सिडनी में जिस तरीके की रेट्स हैं, वहां के जो प्राइसेस हैं, परचेस प्राइसेस हैं एज कम्पेयर टू क्वींसलैंड काफ़ी ज़्यादा है
1: जी।
0: तो वहाँ के भी इन्वेस्टर्स जो हैं सारे सारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, इसलिए मेरे ख्याल में वो तो है ही, ऑब्वियसली वो तो खरीदते रहेंगे, पर हम लोग जो क्वींसलैंड के हैं वो लोग भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा। और देर इज़ अप टू
1: ओलंपिक 32,
0: ओलंपिक इज़ ऑलवेज देयर, ओलंपिक इज ऑलवेज देयर। तभी मैंने कहा कि दो साल में है, पर मेरे ख्याल में मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ हाई डिमांड ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी।
1: जी शुक्रिया जी, धन्यवाद तुहाडा सुनते हो तुसीं रेडियो फोरी भी दे नाल, इस एक घंटे की पटारी दे नाल पंजाबी पटारी नाल जुड़े हुए हैं। साढ़े को तकरीबन हजे भी 25 मिनट पाए ने, यह सारा समा आपां ने अपने अगले गैस्ट देना है। धन्यवाद राज जी, अगले हफ्ते भी तुहाडे नाल संपर्क रहांगे जी। जी शुक्रिया जी, एक चकमें जो गीत वाल पहला चलते हैं तो फिर आप गलबात करांगे। साढ़े नाल दो प्रौहने जुड़े ने जी, इंडिया तो हरियाणे तो आए ने, वैसे उदा हरियाणे वाले ना थोड़ा जहा तो शिकवा भी रहिंदा, पानी पुणी पंजाब का दबी रखते हैं, बंदियां दे पुत नहीं बनते है। चलो इतने भी गल करांगे कि हल्की हल्की जी करके, तो साढ़े नाल जुड़ेंगे जी संजीव कुमार जी, तो नाल साढ़े नाल होणगे मीना देवी जी। लेकिन उस तो पहला आप एक खूबसूरत गीत थोड़े सामने करते हैं, चलो पिंडा चलते हैं, आ चको जी।

0: ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਦਲਸਾੜਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਘੁੱਗੀ ਨੱਪੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਰੇਡੀਓ 4B 98.1 FM ਕੈਂਗਰੂ ਪਿੰਡ ਬਿਸਮਸ ਤੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 9 to 10 ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਟੇਪ ਟੂਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਆ। ਜੋ ਊਚ ਨੀਚ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਗੈਸਟ ਦਾ, ਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੋਹ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੌਗੇਜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੋਲੰਟੀਅਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੇਡ ਸੁਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਖੈਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਅਤੇ ਮੀਨਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੋੜ ਦਵਾਂ, ਕਦੇ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈਏ ਅਤੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ ਨਾ ਜੀ? ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਬ ਸੇ ਹਿੰਦੀ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਲੱਗੇ?
1: ਹਮਾਰੇ ਵਹਾਂ ਪਰ ਅਭੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਜੇ ਕਰਨਾਲ ਅੰਬਾਲਾ ਸਾਈਡ ਮੈਂ
0: ਜੇ ਕਰਨਾਲ ਅੰਬਾਲਾ ਉਹ ਪਚਰੰਗਾ ਚਾਰ ਵਾਲੇ ਜੇ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਰ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਜੀ।
1: ਉਸ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਚਲਤੇ ਹੈ
0: ਜੀ, ਤੋ ਆਪਕੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਚਲਤੀ?
1: ਹਮਾਰੇ ਯਾਨ ਨਹੀਂ ਚਲਤੀ,
0: ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੋ ਆਪ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।
1: ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਦੇ
0: ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ,
1: ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
0: ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਅਸਤੀਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ, ਕੈਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੇਂ?
1: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ।
0: ਹਮ ਚਲੇ ਜਾਏ,
1: ਜਾਣੇ ਕਾ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਵਾਪਿਸ ਜਾਣੇ ਕਾ ਦਿੱਲੀ
0: ਜੀ। ਕਿਆ ਕਿਆ ਐਸਾ ਕਿਆ ਲਗਾ ਵਹਾਂ ਪਰ? ਇੰਡੀਆ ਮੇਂ ਗਰਮੀ ਥੀ, ਜਹਾਂ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੰਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਲਗਾ?
1: ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਤਲਬ ਯਹਾਂ ਠੰਡ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਹੁਤ।
0: ਪਰ ਹਮ ਮੈਨੇ ਦੇਖਾ ਹੈ ਆਪਕੇ ਗਾਂਵ ਮੇਂ ਆਪ ਤੋ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਇਸੀ ਕੋ ਪਿੱਛੇ ਸੇ, ਆਪਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
1: ਕੁੰਡੀ ਅਭੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਚਲਤੀ ਤੀ ਕੁੰਡੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ, ਲੇਕਿਨ ਅਭੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।
0: ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਜਬ ਆਪਕਾ ਬੇਟਾ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਇਆ ਥਾ ਜਹਾਂ ਪਰ?
1: ਹਾਂ, ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਨੇ।
0: ਠੀਕ ਹੈ
1: ਜੀ।
0: ਜਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤੋਂ ਗਾਓ ਸੇ ਹੈ
1: ਜੀ,
0: ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੋ ਹਮਾਰੇ ਦੁਆਬਾ ਇਲਾਕੇ ਸੇ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਵੋ ਡੌਂਕੀ ਮਡੁੰਕੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਥੇ ਇਟਲੀ ਉਟਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇੰਗਲੂਡ ਸਾਰਾ ਭਰ ਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ
1: ਜੀ,
0: ਸੋ ਹਮਨੇ ਤੋ ਵੋ ਦੇਖਾ ਹੋਆ ਥਾ। ਆਪਕੇ ਵੋ ਏਰੀਆ ਥਾ ਜਹਾਂ ਪਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਸੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਥਾ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਛੇਤਰ ਉਠਾ ਲੇਤੇ ਥੇ
1: ਜੀ।
0: ਆਪਕੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਬ ਆਪਕੋ ਕਹਾ ਹੋਗੇ ਮੈਨੇ ਤੋ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ
1: ਜੀ,
0: ਤੋ ਡੰਡਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਛੇਤਰ ਉਠਾਇਆ?
1: ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕਾ ਮਤਲਬ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਗੇ ਬੜਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ
0: ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਔਰ ਬਤਾ ਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੋ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਅਗਰ
1: ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਮ ਤੋ ਇਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਪਾਨ ਕੇ ਲੀਏ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਆ ਥਾ ਹਮਨੇ, ਵਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਕੁਛ ਇਸ਼ੂ ਥੇ ਜੋ ਵਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੇ।
0: ਤੋ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਮੀਨਾ ਦੇਵੀ,
2: ਹਾਂ ਜੀ,
0: ਆਪਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਮੇਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਆ ਹੋਗਾ?
2: ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੂੰ।
0: ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ
2: ਹੂੰ ਜੀ।
0: ਕੋਈ ਸੀਟੇ ਸੂਟੇ ਤੋਂ ਤੋਂ ਵਹਾਂ ਸੇ ਪਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ? ਵੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚਮਚੇ ਤੋਂ ਉਠਾਓ? ਤੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨਾ?
2: ਹਾਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਵੋ
0: ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਔਰ ਕੰਟਰੀ ਸੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕਰ ਆਏ ਹੋਗੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਗਾ
2: ਜੀ ਜੀ।
0: ਤੋ ਜਹਾਂ ਪਰ ਜਬ ਆਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਤਰੇ ਹੋ,
2: ਹਾਂ ਜੀ,
0: ਵੋ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਬਤਾਓ ਨਾ ਕੈਸੇ ਲਗਾ?
2: ਵੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ।
0: ਕੈਸੇ ਅੱਛਾ ਲਗਾ? ਲੋਕ ਤੋਂ ਵਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਆਪਸੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ? ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਗੀ ਵਹਾਂ ਪਰ?
2: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਮਾਰੇ ਸੇ ਜੈਸੇ ਕੁਛ ਪੁਆ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਸਕੇ ਉਨਸੇ ਪੁੱਛਾ ਹਮਨੇ
0: ਜੀ,
2: ਤੋ ਯੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਈ ਹਮੇ ਐਸੇ ਲੱਗਿਆ ਜੈਸੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ
0: ਜੀ,
2: ਜੈਸੇ ਆਪਣਾਪਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸਮੇ
0: ਜੀ। ਤੋ ਅਭੀ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਕੋ ਯਹਾਂ ਪਰ?
2: ਹੋ ਗਏ ਹਮਕੋ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ।
0: ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ?
2: ਹਾਂ।
0: ਤੋ आप हरियाणा से हो?
2: हाँ जी।
0: चलो हम तो ये कहते हैं आप अपने वतन इंडिया से हो।
2: हाँ जी।
0: चार पांच दिन में इन दोनों मुल्कों का जो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर रहते हैं, इसमें कोई डिफरेंस लगा कि सारा सेम सेम ही है?
2: नहीं लगे जी।
0: क्या डिफरेंस है जी?
1: बहुत डिफरेंट, जैसे यहाँ का घूमने के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, और मतलब हर चीज वहाँ से डिफरेंट है।
0: कोई एग्जांपल दो।
1: एग्जांपल जैसे सबसे ज़्यादा जैसे ट्रैफिक जो यहाँ फॉलो करते हैं, जो यहाँ के आदमी श्रोता हैं बंदे हैं जो भी, वो बहुत अच्छा उनका पालन करते हैं।
0: आप नहीं करते वहाँ पर पालन?
1: इतना नहीं करते।
0: क्यों नहीं करते? लॉ तो ब्रिटिश का ही है, वही रूल है, वही किताब उठा लो।
1: रूल वही है, लेकिन वहाँ के जितने यहाँ मतलब स्टिक है वहाँ इतने स्टिक नहीं।
0: नहीं पुलिस वाले तो स्टिक है, मतलब के फॉलो, मतलब के हम ही वहाँ पर लोग ही नहीं ना करते।
1: हाँ लोग नहीं करते वहाँ।
0: तो फिर कसूर तो फिर आपका ही हुआ ना।
1: हाँ, कसूर तो लोगों का ही है
0: जी। चलो ये भी बढ़िया बात है, मानते तो है ना हमारे हमारा वो कसूर है। चलो खैर, आपके लड़के ने जब पहली बार बताया हो कि मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है
1: जी,
0: शायद वो तो उस वक्त पता ही नहीं होगा जी ऑस्ट्रेलिया है क्या।
1: जी नहीं पता था।
0: ठीक है, वहाँ उस समय तो अमेरिका कनाडा या इंग्लैंड इंग्लूड की होती थी, भाई चलो बलैद में जाके बदला भी लेना है हमने
1: जी।
0: तो चलो आपने उसको आज्ञा दे दी जाने के लिए
1: जी।
0: कुछ चिंता नहीं थी मन में?
1: पराया मुल्क है। चिंता तो थी, जैसे मतलब बच्चा पहली बार जा रहा है और वहाँ पर मतलब भाई आगे जाके सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, तो हर पेरेंट्स को मतलब चिंता तो होती है फर्स्ट में।
0: अच्छा, जो इंडियन आप माँ बाप हैं और भी मुल्कों से ऐसे सोचते होंगे
1: जी,
0: जब आप ये कहते हो कि हमारा लड़का या लड़की जाके सक्सेस हुआ, सक्सेस की क्या डेफिनेशन है? क्या आप अपने लड़कों लड़कों से इच्छा करते हैं कि क्या उन्होंने सक्सेस क्या पानी है? पैसे कमाने हैं, घर लेने हैं, या क्या करना
1: है? जैसे मतलब जो पढ़ाई के लिए जब बच्चे आते हैं तो मतलब उनको पढ़ाई पूरी करने के बाद उनको मतलब अच्छी तरह कोई बढ़िया सी उनको सर्विस मिल जाए, और
0: अच्छा सर्विस भी मिल गई, और
1: सर्विस के बाद उनको अपना यहाँ पर
0: घर भी मिल गया। हाँ। वो दे देंगे, राजी ले देंगे। ये सक्सेस होगी
1: जी।
0: ये तो सभी करते हैं।
1: हाँ, तो ये यही सक्सेस जीवन में, और अपने मतलब पेरेंट्स दोनों का मतलब आपस में विचार विमर्श पेरेंट्स के साथ होता रहना चाहिए।
0: माता जी आप क्या सोचते हैं सक्सेस की डेफिनेशन क्या है?
2: मैं ये सोचती हूँ मेरा बच्चा है सबसे अच्छा करे, दूसरा देश जा रहा है, कोई नया काम करे,
0: चोरी चकारी
2: नहीं अच्छा काम करे, जैसे माँ बाप का नाम रोशन हो। अगर भाई ये किसी का ये माँ का लाल है।
0: इस सक्सेस में अगर मैं उन आपके बच्चों की पीआर या सिटीजन जोड़ दूं, वो भी आपके मन में होता है कि यार ये भी होना चाहिए, अदरवाइज वो ठोक नहीं बनेगा? ऐसा भी होता है?
2: वो तो देखो जो बच्चा अच्छा करेगा तो उसको ऊपर वाला अपने आप दे देता है।
0: अच्छा, आपके बच्चों को सिटीजनशिप वगैरह मिल गई, सारा कुछ बन गया, कभी आपके दिमाग में ये आएगा भी चलो यार वापस चलो बहुत हो गया?
1: नहीं वापस का तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ का और वहाँ का बहुत डिफरेंट है। यहाँ का मतलब आदमी, यहाँ का जो वातावरण है, और जिस स्त्रियों का यहाँ मतलब एक दूसरे से प्रेम है, इंसान से इंसान को
0: नहीं नफरत भी है जहाँ पर।
1: अभी तो चार पांच दिन लग रहे आए तो ऐसे लग रहा है कि प्रेम
0: वो आपको अच्छा अच्छा दिखाते हो। अच्छा, आप कितने साल बाद माता जी अपने बेटे को मिले?
2: मैं मिली फरवरी में, तीन हो गई, इसको चौथा में चौथा साल लग गया।
0: चौथा साल। कैसा महसूस हुआ? थप्पड़ लगा?
2: ऐसे लगा बेटा बहुत दिन पता नहीं कहाँ चला गया है, आई तो मैं ऐसा लगा जब आज मुझे पता नहीं क्या मिल गया है।
0: अच्छा, मैं अपनी बात बताता हूँ, जब हम इंडिया में थे ना तो चलो हम तो काम भी करते थे, टीचर थे हम, पर शरारते तो करते थे, गाँव से थे तो हमें तो गाली पड़ती थी, हमारा डांग छोटा सब चलता था हमारे साथ। तो आपके जहाँ भी चलता होगा, हरियाणा बड़े तो मजबूरी है ना, डांग छोटा चलाते और तो कुछ आता नहीं।
1: जी जी,
0: ठीक है। तो अब आप हफ्ता हो गया आपको आए हुए, जब आपने इतने साल हो गए, दो तीन साल हो गए आप प्रोग्रेस देख रहे हो अपने बच्चे बच्ची की, अब आपने उसको आके आंखों के सामने देखा, ठीक है, क्या बदलाव लगा? कोई लगा कि कोई पॉजिटिव बदलाव आ गया, सकारात्मक, कैसे कहते हैं हिंदी में,
1: सकारात्मक,
0: हाँ ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे
1: जी,
0: कोई नेगेटिव क्या आया, मतलब कि क्या लगा आपको?
2: मेरे को बदलाव ये लगा, जैसे मैं रात में सोई सुबह उठी तो ये मेरे को दिखाई नहीं दिया
0: ऐसे, जे तो वैसे किसी को दिखाई देते नहीं स्लेटा है जी।
2: तो मुझे ऐसे लगा जनू कल तो मैंने देखा था, आज वो पता नहीं कहाँ चला गया है। मैं बोल रही थी इनको।
0: अच्छा फिर इसका क्या मतलब आपने सोचा था आपके दिमाग में भी, जी दिखता ही नहीं अगर कहाँ गया है, ये कोई लड़के लड़कियों के साथ घूमता है?
2: नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन
0: नहीं, हमें पता है।
2: थोड़ी बहुत देर दी खैर, फिर वो ऐसे लगा ना उसको फिर देख ले एक बार।
0: अच्छा तो इन्होंने बताया नहीं कि भाई माता जहाँ पर काम के अलावा फिर और कुछ नहीं चलता, हमें उस काम के लिए टाइम पर जाना ही होता है। इंडिया में तो 7-8 बजे तक तो माँ उसको चाय के लिए उठाती है।
2: मालूम था ना कि ये सुबह इतना जल्दी चला जाएगा।
0: पीछे घर में और कौन है, इसका भाई है कोई? देखो जो चार गोरियां पीछे खड़ी है मेरे, जो मैंने क्लिक लगा दी है, तो वो पुश होते होंगे वहां पर।
2: हाँ वो बोलती है मम्मी अच्छे अच्छे फोटो खींच के भेजना
0: जल्दी जल्दी जल्दी। कंध को क्या कहते हैं घर में जो कंध डालते हैं? नहीं नहीं नहीं नहीं कंध नु की कहते हैं भाई, मिस्त्री कंध नहीं पाते होंगे इटा दी,
3: इंग्लिश में क्या
0: वॉल
2: दीवार।
0: ऐसी ऐसी बोटो दिखा के बीड़ो दिखा के गर्मी छेती दीवार बन जाएगी। क्योंकि वो पूछ हो जाएगा उनका दिमाग तो वो पूरा नहीं होगा, उनको फिर बताना पड़ेगा भी देखो ये ठीक तो है सिस्टम जहाँ की गवर्नमेंट ने बनाया, लेकिन इसमें हार्डवर्क बहुत है, इसमें स्ट्रगल है, वो छिपा हुआ है। आपको कई कई साल तक पढ़ाई करनी पड़ती है, माँ बाप को तो बच्चे नहीं बताते कि मेरे पास कितना कर्जा चढ़ा हुआ है। माँ बाप को तो ये लगता है कि जो BYD लेके घूम रहा है, पर माँ बाप को तो ये तो नहीं पता ना वो बाइक को 100 की किस्त भी दे रहा है हफ्ते हफ्ते की। तो चलो ये तो पिछले जो थे ना उनका चल रहा था, लेकिन फिर भी अगर पिछले जो आपके बैठे होते हैं उनका दिमाग पुच हो जाए, फिर आप उनको ये समझाने लगे कि देखो इतना आसान नहीं है, तुम्हारी तो आते ही पहले तो तुम 6 महीने हमें सुबह 3-4 बजे उठ कर ही दिखाना शुरू करो, फिर कैसे सेटिस्फाई करोगे उनको,
2: बच्चों को?
0: मैं सभी को, बच्चे भी तो यही कहेंगे हमें पढ़ने के लिए जहां पर भी, तो मुश्किल हो जाएगा ना सेटल करना। तो ऐसे दिमाग
2: जैसे माहौल में बच्चा आ जाता है तो वो धीरे धीरे उस माहौल में ढल जाता है। जैसे इंडिया का माहौल अलग है और यहाँ का माहौल अलग है, उस माहौल में बच्चा फिर धीरे धीरे अपना डरने लग जाता है।
0: ठीक है, जब जे आया था ना, जे तो अकेले आया था।
2: हाँ जी,
0: चलो मुझे तो नहीं जानता था, वैसे किसी दोस्तों से मिला।
2: हाँ।
0: तो मुझे बोला यार गोरियां तो दिखाने के लिए लेके जा ना मोबाइल। मैंने कहा देख तेरी सब भाई बहन है, काम करो। तो चलो मजाक कर रहे थे। तो इंडिया में जाओगे, अभी हमारे पास 5 मिनट बचे हैं, इंडिया में जाओगे जहाँ से ज़्यादा लेके जाओगे, वहाँ पर उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो तो ऐसा ऐसा सुनेंगे जो उनको अच्छा अच्छा लगे और जो उनके बलबले मन में चल रहे हैं ना वो पूरे हो जाएं। ठीक है, लेकिन क्या संदेशा लेके जाओगे यहाँ से? कोई अपने परिवार के मेंबर पूछ ले या कोई आंडी गुआंडी जो आपका नेबर है वो ही पूछ ले यार मैंने भी अपने बच्ची को भेजना है तो क्या करोगे? उस सीधा जे कहोगे वहां पर बहुत अच्छा है, वहां पर तो बहुत पेड़ होंगे ना, बस डॉलर ही लगे होते हैं, बस दे ही देखना पक्का कौन है, 50 का है ना 20 का मत तोड़ो। तो क्या स्नेहा उनको देगी?
1: नहीं
0: कि बस बहुत बढ़िया बढ़िया है।
1: नहीं बढ़िया है, पेश के साथ में संघर्ष भी है, संघर्ष बहुत है, बढ़िया तो है लेकिन संघर्ष बहुत है उसके लिए। और मतलब कोई बच्चा आए पढ़ाई के लिए वो मतलब पूरी ईमानदारी से पूरे लगन से मतलब पढ़ाई करे, और मतलब किसी भी गलत संगत में या किसी भी गलत नशा का चक्कर में ना पड़े, और अगर पूरा ईमानदारी से वो संघर्ष करेगा तो एक दिन अवश्य वो सक्सेसफुल हो जाएगा।
0: जी माता कुछ कहना चाहोगे? चलो अपने पुत्र को संदेश दे दियो इस रेडियो के माध्यम राही, इस रेडियम के माध्यम से आपने पुत्र को संदेश देना चाहोगे?
2: जी
0: कि पहले तो ये बताएंगे बजाया तो तुम्हें बहुत था मैंने। क्या क्या संदेश देना चाहोगे? शायद सुन रहा होगा वो।
2: हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, बेटा ने हमारे लिए इतना किया पहले आपने यहाँ आया, फिर बहुत संघर्ष काटा उसने यहाँ पर आके, उसके बाद माँ बाप के बारे में सोचा बुलाने के लिए।
0: अगर आपके पुत्र पुत्री ने ये कहा कि हम पक्के हो गए, हम वो वापस तो फिर जाएंगे नहीं,
2: नहीं
0: ठीक है, उनकी जिम्मेवारी वहां पर बढ़ जाएगी, वहां पर उनकी लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी, लॉयर होंगे वो राज जैसे, फिर लॉयर करने पड़ेंगे, वो अपने पैसे बनाते रहेंगे उनसे, ठीक है, वो फंस गए। अगर उन्होंने ये कह दिया, दो तीन मिनट है हमारे पास, कि बेबे बापू वो बेच दो यार, पिछला जो कुछ जमीन जमून जायदाद है वो पैसा यहाँ पर ले आओ, क्या करोगे, क्या करोगे जी?
1: एक बच्चा हमारा वहाँ भी है और एक यहाँ है, तो जो भी है इनका जितना हो सकेगा हमारे से हम इनका हेल्प करेंगे।
0: वो कह रहा है कि मेरा 50% बेच दो,
1: 50% बच्चा बोलेगा तो बेच देंगे जी,
0: बच्चा बोलेगा बेच दोगे आप?
2: नहीं नहीं, मेरा बेटा ये बड़ा वाला यहाँ आया तो ये बोला था, ये मेरा ऐसे बात नहीं है, बेच देंगे, छोटा भाई है इसका, तो बोला ये आज ये यहाँ पर आया तभी बोल दिया था मम्मी, ये छोटा भाई को दे दूंगा मैं।
0: अपने बच्चे को ये नहीं कहोगे भाई जब इतनी मेहनत से जेब बनाया है तो फिर हमारा क्यों बीच में अटैच कर रहे हो, क्या पता कल को कैसा माहौल बन जाए?
2: इसकी मर्जी है, वो देखो आधा तो जो हमारी प्रॉपर्टी है इसमें है ही
0: जी,
2: और जो बेटा बोलेगा वही काम करेंगे।
0: अगर आपका बच्चा कामयाब नहीं हुआ आपके हिसाब से,
2: हाँ,
0: फिर कैसा लगेगा?
2: नहीं तो हमें बच्चा के साथ चलना है,
1: हमें विश्वास है हमारा बच्चा अवश्य कामयाब होगा,
0: मुझे शक है। अच्छा, जहाँ के जो इंडिया से लड़के लड़की आते हैं, दो मिनट का समय बचा है, मैं उनको बुरा नहीं कहता, उनकी आजादी या जो मर्जी करें, कभी लड़के लड़की के साथ हो जाते हैं, ठीक है, वो अपने सपने बुनने लगते हैं, कोई लड़की लड़के के साथ सपने बुनने लगती है, पेरेंट्स कट ऑफ होते हैं उसमें से, ऐसे रिलेशन को आप कैसे स्वीकार करेंगे, है उसमें कोई गारंटी है?
2: हाँ, मुझे गारंटी मेरे बेटा की।
0: अच्छा, बेटे की है, बेटी की नहीं,
2: बहू की भी है,
0: बहू की नहीं है,
2: बहू की भी है,
0: मैं तो दोनों की गारंटी लेता। क्या सोचते हो ऐसे रिलेशन, अपने गांव में तो ऐसे बोलना भी मुश्किल हो जाता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ अपने वहाँ लिश को लव मैरिज बोलते हैं, लेकिन यहाँ बच्चे मतलब अच्छे परिवार से है तो पीछे अच्छे हुए के माँ बाप ने उनको संस्कार दिए हैं, तो वो बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं, उसमें माँ बाप ने भी उनका मतलब अपने बच्चों को समझना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए
0: जी। धन्यवाद करते हैं जी, समा इजाजत नहीं दे रहा, गलां दा होर भी कर सकदे, हुण मैनूं दस्सो हुण तां हुण झाका जिहा खोलेंगे, हुण कहिंदे चलो अद्धा घंटा बोला लैंदे आं, ओ अच्छा पंजाबी हो गया। मैं क्या, अब तो आपका वो जो कहते हैं ना गाँव में भी, अब तो झाका सा खुल गया है, अब जे तो नहीं कह रहे कि चलो 15 मिनट और लगा लें।
1: नहीं तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और पंजाबी भाषा भी बहुत अच्छी है, इसके भी मतलब इसमें हम तो चाहते हैं कि और भी इंटरव्यू लंबा चलता रहे, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके
0: जी। धन्यवाद जी,
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार
0: जी जी, अगले हफ्ते फिर कोशिश करेंगे रابطہ बनाएंगे, अगर आज जी ने थोड़ा सा टाइम हमें ज्यादा दे दिया था
1: जी,
0: ठीक है, धन्यवाद जी, शुक्रिया जी थोड़ा सारे श्रोतियों का, तुम आनंद माणिया प्रोग्राम थोड़ा, चलो मैं एक अद्धा गीत होर भी ला के चले जाना है, बने रहो जी इस प्रोग्राम के नाल, आपां खुलियां गल्लां करदे आं, मां बोली पंजाबी च गल्लां करदे आं, अज हरियाणी ते हिंदी भी चली आ, मेरी हिंदी तो मैनूं माफ़ी, क्योंकि 6वीं च मैनूं हिंदी लगी सीगी, 10वीं च जाके समझ लगी सी, उस तों बाद स्कूल खत्म हो गया सी, इस करके फिर हुण मेरे वास्ते गल वैसे है ही नहीं गी, आ चक्को गाणा खूबसूरत जिहा।